और पूरी दुनिया के सैर करते हैं, या दीन की दावत के लिए या किसी की ज़ियारत के लिए नफली सफ़र करते हैं, तो ये नफली सफ़र उस वक़्त तक कोई फ़ायदा नहीं देंगे जब तक फ़र्ज़ जो है उसको अदा नहीं करेंगे। मुझसे कई हमारे भाइयों ने बहनों ने नफली नमाज के मुतालिक सवाल किए। मैं आप सब की खिदमत में और तमाम सुनने वालों की खिदमत में यर्ज़ करना चाहूँगा कि हम में से जिसके ज़िम्मे भी क़ज़ा नमाजें हों उनका पढ़ना जल्द से जल्द हम पर वाजिब है और उनकी क़ज़ा हमें जल्दी करनी चाहिए। बाल बच्चों की जो हम तरबियत करते हैं और उनकी परवरिश करते हैं, इसके बाद जो भी हमारा जो काम काज है रिज़्क़े हलाल कमाने के लिए, उस टाइम को निकाल के जब भी हमें फ़ुर्सत मिले तो हम उस फ़ुर्सत के वक़्त में जो नमाज़ें क़ज़ा हमने की हैं उनको फ़ौरन पढ़ना चाहिए यहाँ तक कि वो पूरी हो जाएं। और क़ज़ा नमाज़ें नफल नमाज पढ़ने से बहुत बेहतर है, यानी आदमी जिस वक़्त नफल पढ़ता है उन्हें छोड़कर उनके बदले जो फ़र्ज़ क़ज़ा हुए हैं उनको पढ़ना चाहिए ताकि वो अल्लाह ताला के अज़ाब से बरीउज़िम्मा हो जाए। और इस बात की उम्मीद रखें जब आप क़ज़ा नमाज़ें पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला से इस बात की उम्मीद रखें कि वो अपने ख़ास फ़ज़लो करम से क़ज़ा नमाज़ों के पढ़ने पर उन नवाफिल का सवाब भी अता फरमा देगा जिनको आप पढ़ने की नियत करते हैं या जिन नवाफिल के बदले आप क़ज़ा नमाज़ें पढ़ रहे हैं। मैं आप तमाम हज़रात की खिदमत में ये भी अर्ज़ करता चलूं, साल के बाद जो ही अल्लाह ताला ने अगर आपको माल और दौलत अता किया है, ख़ास तौर पर हमारी माओं बहनों ने जो जेवर जो ज्वेलरी गोल्ड वग़ैरह रखा हुआ है वो जब साल गुज़र जाए तो उस पर जो ज़कात फ़र्ज़ है उसको ज़रूर अदा करें। ये ज़कात देना उस नफली सदक़े से खैरात से बहुत बेहतर है जो हम ज़कात को अदा किए बग़ैर देते हैं, क्योंकि जब आप ज़कात अदा करेंगे तो अल्लाह ताला के अज़ाब से बच जाएंगे और अल्लाह ताला का जो आर्डर जो हुक्म है क़ुरान पाक में उसकी तालीमात पर भी अमल होगा। अल्लाह ताला आपको इसका बहुत बड़ा अजर और सवाब अता फरमाएगा।